से हंसी, आके मेरी फिर उसकी आंखों से जमली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा बिच दूजे च गिलास, मैनू नी पता सी गिलास च की बट

पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी है अमूल पंडहार अमूल आव है अमूल ले जाए अमूल पाए अमूल आसमाय अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल

लखों लखवीश लख लख केड़ा आखियां है एक नाम जगदीश एतरा है पत पवड़ियां चढ़िया है कीश सुन गल्ला आकाश की ईटाई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर ना मंगण दे न जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मन शोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती तित्ती वार पौन पाणी अग्नि पाताल तिस भी धरती थाबर की

इस वेले फ्रीडम ते हर चीज विक्री ते है सारे घरेलू सामान ते 50% तक छूट प्राप्त करो। इस विच गलीचे, लाइटिंग, बिस्तर दी चादर, दीवार कला, शीशे अते होर भी बहुत कुछ शामिल हन। जल्दी करो, विक्री हुन चालू है सिर्फ फ्रीडम ते।